ब्रह्मोद्यादि ब्रह्मादिनी विद्याया गुणाना गुणुनु पुनर्वादिला अमायो हो एलिजाबेथ सामा ओमाया निगुइन बुद्धि दामिया आदि उन दो